तुम्हें सरकार मदीना तुमाके सलाम बार बार तुम्हें तो ताज मदीना तुमाके सलाम बार